0: ऐसी कृपा करहु प्रभ मेरे हर नानक बिसर न काहूं बेरे। सतगुरु कृपा करन सर्वसंगत दियां हाजरियां दर प्रवान करन दरों करों गुरसिखी जीवन की दात गुरु चरणा नाल प्रेम अते प्रतीत बख्शिश करन सतगुरों का पावन फरमान बिन भागा सतसंग न लभे बिन संगत मै परिजे जीव। सतगुरों का असा जीवन ते ए तरस है ए रहमत है जो असा जीवन सतगुरों ने सत्संग दियां कड़ियां बख्शिश कीतियां हन। सो इतने हाजरी दर प्रवान बुलाओ फतेह आखो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
1: वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु सवारी साध संगत जी आप जी नूं कीर्तन सरवण करवा रहे सन भाई साहब भाई गुरजीत सिंह जी बैंका हजूरी कीर्तनी है श्री दरबार साहब अमृतसर। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਥਾ ਦਾ। ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਾਲੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

सच्चे पिता अकाल पुरख वाहिगुरु जी, धन हो सतगुरु श्री गुरु नानक देव साहिब जीओ महाराज, धन हो सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जीओ महाराज, धन हो सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज। सच्चे पातशाह आप जिया ने अपार कृपा करके अमृत वेले तो प्रकाश मन हो के इस समय तक समूह संगतां नूं खुले दर्शन दीदार बख्शिश कीते। आप जी के दरों करों वरसाए होए समूह रागी ढाडी कथा वाचक सिंघा ने आप जी का जस गायन कीता। बेअंत संगता ने हाजरियां भरियां हन, सभना दियां हाजरियां पेटावां चरणा ते प्रवान कर लैणियां। दरों करों सिखी सिदक भरोसा नामदान बख्शिश करके निवाजना, कारोबार परिवार रुजगार वादे वरकतां बख्शिश करने, मनोकामनावां भावनावां गुरमत अनुसार पूरियां करनियां, समुचियां ही सेवावां निभांदियां होईयां सरबत भुल्लां दी खिमा बख्शिश करनी। दीवाना दी समाप्ति दी अरदास है जी, छे पौड़ियां आनंद साहिब जी के पाठ होए हन, कड़ा प्रसादी देग हाजर है दर प्रवान होवे, दर प्रवान होया प्रसाद संगतां विच वरताउण दी आग्या होवे, जो जी शके सुआब जी का ही नाम जपे कला वाहिगुरु जी की वरते। कृपा करो सच्चे पातशाह प्रीतम जी पावन पवित्र हुक्मनामे बख्शिश करके समूह संगतां नूं नदरों नदरी

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿ ਭੰਗ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ ਭੁੱਖਿਆ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆ ਭਾਰ ਸਹਿਸ ਸਿਆਣ ਪਾ ਲੱਖ ਹੋਹੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੈ ਨਾਲ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਤੁੱਟੈ ਪਾਲ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਪਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸੀਸ ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈ ਹੈ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤਾ ਹਉਮੈ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਏ ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਨ ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਨ ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨੀਸਾਨ ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆ ਚਾਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇਹ ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰ ਦੇਹ ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨਾ ਆਵੈ ਤੋਟ ਕਥ ਕਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ ਦੇਦਾ ਦੇ ਲੈ ਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹੁ ਨਾਨਕ ਵਿਗਸੈ ਵੇ ਪਰਵਾਹੁ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ ਆਖਹਿ ਮੰਗਹਿ ਦੇਹ ਦੇਹ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਐ ਜਿਤ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ ਮੂਹਾਉ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ ਜਿਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਉ ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਘਰ ਲੈ ਜਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ਗੁਰ ਈਸਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾ ਵਿਨ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਾਏ ਕਰੀ ਜੇਤੀ ਸਿਰਠ ਉਪਾਈ ਵੇਖਾ ਵਿਨ ਕਰਮਾ ਕੇ ਮਿਲੈ ਲਈ ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਨਿਕ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰ ਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ ਨਵਾਂ ਖੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਐ ਨਾਲ ਚੱਲੈ ਸਭ ਕੋਏ ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਏ ਕੈ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੇ ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵਈ
वात ना पुछै के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे ते हा कोय ना सुजई जे तिस गुण कोय करे सुनिया सिद्ध पीर सुरनाथ सुनिया धरत धवल आकाश सुनिया दीप लो पाताल सुनिया पोहे ना सकै काल नानक भगता सदा विगास सुनिया दुख पाप का नास सुनिया ईसर ब्रह्मा इंद सुनिया मुख सालाहन मंद सुनिया जोग जुगत तन भेद सुनिया सासत सिमरित वेद नानक भगता सदा विगास सुनिया दुख पाप का नास सुनिया सत संतोख ग्यान सुनिया अठ सठ का इसनान सुनिया पढ़ पढ़ पावह मान सुनिया लागै सहज ध्यान नानक भगता सदा विगास सुनिया दुख पाप का नास सुनिया सरा गुना के गाह सुनिया सेख पीर पात साह सुनिया अंधे पावह राह सुनिया हाथ हुवै असगाह नानक भगता सदा विगास सुनिया दुख पाप का नास मने की गत कही ना जाए जे को कहै पिछै पछुताए कागद कलम ना लिखन हार मने का बह करन विचार ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मनै सुरत होवै मन बुद्ध मनै सगल भवन की सुध मनै मोहे चोटा ना खाए मनै जाम कै साथ ना जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मनै मार्ग ठाक ना पाए मनै पत स्यो प्रगट जाए मनै मग ना चलै पंथ मनै धर्म सेती संबंध ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जानै मन कोए मनै पावह मूख द्वार मनै परवारै साधार मनै तरै तारे गुर सिख मनै नानक पवहै ना भिख ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जानै मन कोए पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावहै दरगह मान पंचे सोहहै दार राजान पंचा का गुर एक ध्यान जे को कहै करै विचार करते कै करनै नाही सुमार धौल धर्म दया का पूत संतोख था परख्या जिन सूत जे को बुझै होवै सचियार धवलै उपर किता भार धरती होर परै होर होर तिसते भार तलै कवन जोर जी जात रंगा के नाव सबना लिखिया बुड़ी कलाम एहो लेखा लिख जानै कोए लेखा लिखिया किता होए केता तान सवाले हो रूप केती दात जाने कौन कूत कीता पसाओ एको कवाओ तिस्ते होए लख दरियाओ कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख पाओ असंख पूजा असंख तप ताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह है उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह भख सार असंख मोन लिवलाए तार कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूरख अंध कोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गाल वड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे असंख मलेच
मल भख खाहे असंख निंदक सिर कर है भार नानक नीच कहै विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लोह असंख कह है सिर भार होए अखरी नाम अखरी सालाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखन बोलन बान अखरा सिर संजोग वखान जिन एह लिखे तिस सिर नाहे जिव फुरमाए तिव तिव पाहे जेता किता तेता नाओ विन नावै नाही को थाओ कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार भरिया हाथ पैर तन देह पानी धोतै उत्तर सो खेह मूत पलीति कपड़ होए दे साबून लइयै ओह धोए भरिया मत पापा कै संग ओह धोपै नावै कै रंग पुन्नी पापी आखन नाहे कर कर करना लिख लै जाहो आपे बी जापे ही खाहो नानक हुक्मी आवह जाहो तीर्थ तप दया दत दान जे को पावै तिल का मान सुनिया मन्या मन कीता भाओ अंतरगत तीर्थ मल नाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोए वेन गुण कीते भगत ना होए स्वस्थ आथ बाणी बरमाओ सत सुहान सदा मन चाओ कवन सो वेला वक्त कवन कवन थित कवन वार कवन से रुति माहो कवन जित हुआ आकार वेल ना पाया पंडती जे होवै लेख पुराण वक्त ना पायो कादिया जे लिखन लेख कुरान थित वार ना जोगी जानै रुत माहो ना कोई जा करता सिर ठीकाओ साजे आपे जानै सोई केव कर आखा केव सालाही क्यों वरनी केव जाना नानक आखन सब को आखा एक दू एक सियाना वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जा का हुवै नानक जे को आपा उजाणै अगै गया ना सो है पाताला पाताल लख आगासा आगास ओड़क ओड़क भाल थके वेद कहन एक वात सहस अठार है कहन कतिबा असलू एक धात लेखा होए ता लिखिया लेखा होए विनाश नानक वड्डा आखिया आपे जाने आप सालाही सालाहे एति सुरत ना पाईया नदिया अतै वाह पव है समुंद ना जानिया है समुंद साह सुल्तान गिरहा सेति माल धन कीड़ी तुल ना होवनी जे तिस मनहु ना विसर है अंत ना सिफती कहन ना अंत अंत ना करनै देन ना अंत अंत ना वेखन सुनन ना अंत अंत ना जापै क्या मन मंत अंत ना जापै कीता आकार अंत ना जापै पारावार अंत कारण केते बिल लाहे ताके अंत ना पाए जाहे एहो अंत ना जाने कोए बहुता कहिया बहुता होए वड्डा साहिब ऊंचा थाओ ऊचे उपर ऊंचा नाओ एवड ऊंचा होवै कोए तिस ऊंचे कौ जाने सोए जेवड आप जाने आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया ना जाए वड्डा दाता तिल ना तमाए केते मंग है जोद अपार केते आगणत नहीं विचार केते खाप तुटह बेकार केते लै लै मुकर पाहे केते मूर्ख खाही खाहे केते आ दुख भूख साध मार एह पे दात तेरी दातार बंद खलासी भाणे होए होर आख ना सकै कोए जे को खाए क आखन पाए ओह जाने जेतिया मुहे खाए आपे जाने आपे दे आख है से पे केई के जिसनो बक्से सिफत सालाह नानक पात साही पात साह
अमुल गुण अमुल वापार अमुल वापारिये अमुल भंडार अमुल आवह अमुल लै जाहे अमुल पाए अमुला समाहे अमुल धर्म अमुल दीबान अमुल तुल अमुल परवान अमुल बख्शीस अमुल निशान अमुल कर्म अमुल फुरमान अमुल अमुल आख्या ना जाए आख आख रहे लिव लाए आख है वेद पाठ पुराण आख है पढ़े करह वखियान आख है ब्रह्मे आख है इंद आख है गोपी तै गोविंद आख है ईसर आख है सिद्ध आख है केते कीते बुद्ध आख है दानव आख है देव आख है सुर नर मुन जन सेव केते आख है आखन पाहे केते कह कह उठ उठ जाहे एते कीते होर करे हे ता आख ना सकह केई के जेवड भावै तेवड होए नानक जाणै साचा सोए जे को आखै बोल विगाड़ ता लिखिया सिर गावारा गावार सो दार केहा सो घर केहा जित बह सर्ब समाले वाजे नाद अनेक असंखा केते वावन हारे केते राग परी स्यौ कहियन केते गावन हारे गावहि तुहन पौन पानी बह संतर गावै राजा धर्म दुआरे गावै चित गुप्त लिख जान है लिख लिख धर्म विचारे गावै ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारे गावै इंद इदासन बैठे देवत्या दार नाले गावै सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावै वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखीसर जुग जुग वेदा नाले गावह मोहनिया मन मोहन सुरगा मछ पयाले गावन रतन उपाय तेरे अठ सठ तीरथ नाले गावह जोध महाबाल सूरा गावह खानी चारे गावह खंड मंडल वर भंडा कर कर रखे तारे से तुदनो गावह जो तुद भावन रते तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चेतना आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर विखै कीता अपना जीव तिस दी वडियाई जो तिस भावै सोई करसी हुक्म ना करना जाई सो पात साहो साहा पात साहिब नानक रह नर जाई मुंदा संतोख सरम पात झोली ध्यान की करह बिभूत खिंथा काल कुवारी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमात आई पंथी सगल जमाती मन जीता जग जीत आदेश तिसा आदेश आदि अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजह नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद्ध सिद्ध अवरा साध संजोग वे जोग दोयकार चला वह लेखे आवह भाग आदेश तिसा आदेश आदि अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एका माई जुगत वे आई तिन चेले परवान एक संसारी एक भंडारी एक लाए दी बाण जिव तिस भावै तिवै चलावै जिव होवै फुरमान ओह वेखै उना नदर ना आवै बहुता एहो वेडान आदेश तिसै आदेश आदि अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश आसन लोए लोए भंडार जो किछ पाया सो एका वार कर कर वेखै सिर जनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसै आदेश आदि अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एक दूजी बव लख हो हे लख हो वह लख वीस लख लख गेड़ा आखिया है एक नाम जगदीश ए तो राहे पत पवड़िया चढ़िया होए इक्कीस
सुन गल्ला आकाश की कीटा आई रीस, नानक नदरी पाई आए कूड़ी कूड़ा ठीस। आखण जोर चुपै नह जोर, जोर ना मंगन देन ना जोर, जोर ना जीवन मरण नह जोर, जोर ना राज माल मन सोर, जोर ना सुरते ज्ञान विचार, जोर ना जुगते छुटै संसार, जिस हाथ जोर कर वेखै सोए। नानक उत्तम नीच ना कोए, राति रुति थिति वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिन के नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथै सोहन पंच परवान, नदरी कर्म पवै नीसान, कच पकाई उथै पाए, नानक गया जापै जाए, धर्म खंड काए हो धर्म, ज्ञान खंड काख हो कर्म, केते पवन पानी वै संतर, केते कान महेश, केते ब्रह्म घाड़त घड़िया है, रूप रंग के वेस, केतिया कर्म भूमि मीर, केते केते तू उपदेश, केते इंद चंद सूर, केते केते मंडल देश, केते सिद्ध बुद्ध नाथ, केते केते देवी वेश, केते देव दानव मुन, केते केते रतन समुंद, केतिया खानी केतिया बाणी, केते पात नरिंद, केतिया सुरती सेवक, केते नानक अंत ना अंत, ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड, तिथै नाद विनोद कोड़ आनंद, सरम खंड की बाणी रूप, तिथै घाड़त घड़िया बहुत अनूप, ताकिया गला कथिया ना जाहे, जे को कहै पिछै पछुताए, तिथै घड़िया सुरत मत मन बुद्ध, तिथै घड़िया सुरा सिद्धा की सुध, कर्म खंड की बाणी जोर, तिथै होर ना कोई होर, तिथै जोध महाबल सूर, तिन मह राम रहिया भारपूर, तिथै सीतो सीता महिमा माहे, ताके रूप ना कथने जाहे, ना ओहे मरहै ना ठागे जाहे, जिन कै राम वसै मन माहे, तिथै भगत वसहै के लो, करहै आनंद सच्चा मन सोए, सच खंड वसै निरंकार, कर कर विखै नदर निहाल, तिथै खंड मंडल वर भंड, जे को कथै ता अंत ना अंत, तिथै लो लो आकार, जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार, विखै विगसै कर विचार, नानक कथना करड़ा सार, जत पाहारा धीरज सुनियार, अहरन मत वेद हथियार, पाओ खला अगन तप ताओ, भांडा पाओ अमृत तित ढाल, घड़िया शब्द सची टकसाल, जिन कौ नदर कर्म तिन कार, नानक नदरी नदर निहाल, सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता, धरत महत दिवस रात, दोए दाई दाया खिलै सगल जगत, चंगे आईया बुरे आईया, वाचै धर्म हादूर, करमी आपो अपनी के नेड़ै के दूर, जिने नाम त्याया गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले केते छुट्टी नाल, जिने नाम त्याया गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले केते छुट्टी नाल, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, श्री वाहिगुरु जी की फतेह, जाप श्री मुख वाक, पात साहि दसवी छपै छंद, त्वै प्रसाद, चक्कर चिहन अर बरन जात, अर पात नहन जेह, रूप रंग अर रेख भेख, को कह ना सकत केह, अचल मूरत अनभव प्रकाश, अमितोज कहि जाय, कोट इंदर इंदरान, साहे साहान गणिजै, त्रिभवन महीप, सुर नर असुर, नेत नेत बान त्रिन कहत, त्वै सर्ब नाम कथै कवन,
कर्म नाम बरनत सुमत पुजंग प्रयात छंद नमस्तवंग अकाले नमस्तवंग कृपाले नमस्तंग अरूपे नमस्तंग अनूपे नमस्तंग अपेखे नमस्तंग अलेखे नमस्तंग अकाये नमस्तंग अजाये नमस्तंग अगंजे नमस्तंग अपंजे नमस्तंग अनामे नमस्तंग अठामे नमस्तंग अकर्मंग नमस्तंग अतर्मंग नमस्तंग अनामंग नमस्तंग अतामंग नमस्तंग अजीते नमस्तंग अपीते नमस्तंग अबाहे नमस्तंग अटाहे नमस्तंग अनिले नमस्तंग अनादे नमस्तंग अछेदे नमस्तंग अगादे नमस्तंग अगंजे नमस्तंग अपंजे नमस्तंग उदारे नमस्तंग अपारे नमस्तंग सो एकाय नमस्तंग अनेकाय नमस्तंग अपूते नमस्तंग अजूपे नमस्तंग निरकर्मे नमस्तंग निरपरमे नमस्तंग निर्देशे नमस्तंग निरपेशे नमस्तंग निरनामे नमस्तंग निरकामे नमस्तंग निरताते नमस्तंग निरकाते नमस्तंग निर्दूते नमस्तंग अपूते नमस्तंग अलोके नमस्तंग अशोके नमस्तंग निरतापे नमस्तंग अथापे नमस्तंग त्रिमाने नमस्तंग निदाने नमस्तंग अगाहे नमस्तंग अबाहे नमस्तंग त्रिवर्गे नमस्तंग असर्गे नमस्तंग प्रपोगे नमस्तंग सोजोगे नमस्तंग अरंगे नमस्तंग अपंगे नमस्तंग अगम्ये नमस्तस्तरम्ये नमस्तंग जलाश्रे नमस्तंग निराश्रे नमस्तंग अजाते नमस्तंग अपाते नमस्तंग अमजबे नमस्तस्त अजबे अदेशंग अदेशे नमस्तंग अपेशे नमस्तंग निरतामे नमस्तंग निर्वामे नमो सर्वकाले नमो सर्वदयाले नमो सर्वरूपे नमो सर्वपूपे नमो सर्वखापे नमो सर्वथापे नमो सर्वकाले नमो सर्वपाले नमस्तस्त देवाय नमस्तंग अपेवाय नमस्तंग अजन्मे नमस्तंग सोबन्मे नमो सर्वगौणे नमो सर्वपौणे नमो सर्वरंगे नमो सर्वपंगे नमो काल काले नमस्तस्त दयाले नमस्तंग अबरणे नमस्तंग अमरणे नमस्तंग जरारंग नमस्तंग किरतारंग नमो सर्वतंदे नमोस्त अबंदे नमस्तंग निरसाके नमस्तंग निर्वाके नमस्तंग रहीमे नमस्तंग करीमे नमस्तंग अनंते नमस्तंग महंते नमस्तस्त रागे नमस्तंग सुहागे नमो सर्वसोखं नमो सर्वपोखं नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्वदयाले नमो सर्वपाले चाचरी छंद त्वय प्रसाद अरूप हैं अनूप हैं अजू हैं अपू हैं अलेख हैं अपेख हैं अनाम हैं अकाम हैं अते हैं अपे हैं अजीत हैं अपीत हैं त्रिमान हैं निदान हैं त्रिवर्ग हैं असर्ग हैं अनिल हैं अनाद हैं अजय हैं अजाद हैं अजन्म हैं अबरण हैं अपूत हैं अपरण हैं अगंज हैं अपंज हैं अचूज हैं अचंज हैं अमीक हैं रफीक हैं अतंध हैं अबंध हैं निर्बूज हैं असूज हैं अकाल हैं अजाल हैं अल्लाह हैं अजाह हैं अनंत हैं महंत हैं अलीक हैं निरसरीक हैं निर्लंब हैं असंभ हैं अगम हैं अजम हैं अपूत हैं अछूत हैं अलोक हैं अशोक हैं अकर्म हैं अपर्म हैं अजीत हैं अपीत हैं अबाह हैं अगाह हैं अमान हैं निदान हैं अनेक हैं फिर एक हैं पुजंग प्रयात छंद नमो सर्व माने समस्ति निदाने नमो देव देवे अपेखी अपेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे अनंगी अनाथे निरसंगी परमाथे नमो भान भाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो भान भाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत नृते नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे
अनंगी अनामे समस्ति सरूपे परपंगी परमाथे समस्ति विभूते कलंकं बिना ने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वरं परम रूपे नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे नमो शस्त्र पाने नमो अस्त्र माने नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता अपेखी अपरमी अपुगी अपुगते नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवेशो धर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साह साहं नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तं इसनानं नमो मंत्र मंत्रं नमो जंतर जंतरं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सचदानंद सर्वं परणासी अनूपे अरूपे समस्तुल निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा बृद्ध करता अदो उर्द अर्दं अगं ओग हर्ता परम परम परमेश्वरं प्रोच पालं सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालं अचेदी अपेदी अनामं अकामं समस्तो पराजी समस्तस्ततामं तेरा जोर चाचरी शांद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपेय हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेस हैं पुजंग पर्यात छंद अगाधे अबाधे आनंदे स्वरूपे नमो सर्व माने समस्ते निदाने नमस्तवंग निरनाथे नमस्तवंग परमाथे नमस्तवंग अगंजे नमस्तवंग अपंजे नमस्तवंग अकाले नमस्तवंग अपाले नमो सर्व देशे नमो सर्व पेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सोख सोखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतं नमो सर्व पीतं नमो सर्व ज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्व मंत्रं नमो सर्व जंत्रं नमो सर्वदृशं नमो सर्वकृसं नमो सर्व

है, परे है, पवित्र है, पृथ्वी सह, अधिसह, अदृश्य, अकृश्य, भगवती छंद त्वय प्रसाद कथते के आ छिज देसह, के आ भिज भेसह, के आ गंज करमै, के आ भंज भरमै, के आ भिज लोकै, के आ दित सोकै, के अवधूत बरनै, के विभूत करनै, के राजं प्रभा है, के धर्मं तुजा है, के आशोक वर्णय, के सर्वा अपर्णय, के जगतं कृति है, के छत्रं छत्री है, के ब्रह्मं स्वरूपय, के अनुभव अनुपय, के आदि अदेव है, के आप अपेव है, के चित्रं विहीनय, के एकय अधीनय, के रोजी रजाकै, रही मै रिहाकै, के पाक बेऐब है, के गैबुल गैब है, के अफबुल गुनाह है, के साहान साह है, के कारण कुनिंद है, के रोजी देहांद है, के राज करहीम है, के कर्मं करीम है, के सर्वं कली है, के सर्वं दली है, के सर्वतर मान्या, के सर्वतर दान्या, के सर्वतर गौनय, के सर्वतर भौनय, के सर्वतर देसय, के सर्वतर पेशय, के सर्वतर राजय, के सर्वतर साजय, के सर्वतर दीनय, के सर्वतर लीनय, के सर्वतर जाहो, के सर्वतर पाहो, के सर्वतर देसय, के सर्वतर पेशय, के सर्वतर कालय, के सर्वतर पालय, के सर्वतर हंता, के सर्वतर गंता, के सर्वतर पेखी, के सर्वतर पेखी, के सर्वतर काजय, के सर्वतर राजय, के सर्वतर सोखय, के सर्वतर पोखय, के सर्वतर त्राणय, के सर्वतर प्राणय, के सर्वतर देसय, के सर्वतर पेशय, के सर्वतर मान्याय, सदैवं प्रधान्याय, के सर्वतर जाप्याय, के सर्वतर थाप्याय, के सर्वतर भानय, के सर्वतर मानय, के सर्वतर इंद्रय, के सर्वतर चंद्रय, के सर्वं कलिमय, के परमं फहिमय, के आकल अलामय, के साहिब कलामय, के हुस्नुल वजू है, तमामुल रुजू है, हमेशुल सलामय, सलीखत मुदामय, गनीमुल सिकस्तय, गरीबुल परस्तय, बिलंदुल मकानय, जमीनुल जमानय, तमीजुल तमामय, रुजूअल निदानय, हरीफुल अजीमय, रजायक यकीनय, अनेकुल तरंग है, अभेद है, अपंग है, अजीजुल निवाज है, गनीमुल खिराज है, निरुक्त स्वरूप है, त्रिमुक्त विभूत है, प्रभुगत प्रभा है, सुजुगत सुधा है, सदैवं स्वरूप है, अपेदी अनूप है, समस्तोपराज है, सदा सर्वसाज है, समस्तुल सलाम है, सदैवल अकाम है, निर्बाध स्वरूप है, अगाध है, अनूप है, ओं आदरूपे अनाद स्वरूपय, अनंगी अनामे, त्रिपंगी त्रिकामे, त्रिवर्गं त्रिबाधे, अगंजे अगाधे, सुभं सर्वभागे, सुसर्वा अनुरागय, त्रिभुगत स्वरूप है, अचिज है, अछूत है, के नरकं परनास है, पृथ्वीउल प्रवास है, निरुकत प्रभा है, सदैवं सदा है, विभुगत स्वरूप है, प्रयुगत अनूप है, निरुकत सदा है, विभुगत प्रभा है, अनुकत स्वरूप है, प्रयुगत अनूप है, चाचरी छांद अपंग है, अनंग है, अपेख है, अलेख है, अपर्म है, अकर्म है, अनाद है, जुगाद है, अजय है, अभय है, अभूत है, अदूत है, अनास है, उदास है, अतंध है, अबंध है, अपगत है, विरक्त है, अनास है, प्रकाश है, निचिंत है, सुनिंत है, अलेख है, अदेख है, अलेख है, अपेख है, अटाह है, अगाह है, असंभ है, अगंभ है, अनिल है, अनाद है, अनित है, सुनित है, अजात है, अजाद है, चरपट छंद त्वय प्रसाद।
सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रसावल छांद त्वय प्रसाद नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विपुते परमाथं परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विपुते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्रय न पुत्रय न सत्रय न मित्रय न ताता न माता न जाता न पाता निरसाकं सरीक है अमितो अमीक है सदैवं प्रभा है अजय है अजा है भगवती छंद त्वय प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है हमेशुल सलाम है समस्तुल कलाम है के साहिब दिमाग है के हुसनल चराग है के कामल करीम है के राज करहीम है के रोजी देहांद है के राज कर हिंद है करीम उल कमाल है के हुसन उल जमाल है गनीम उल खिराज है गरीब उल निवाज है हरीफुल सिकन है हिरासुल फिकन है कलंकं परनास है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजायक रहीम है समस्तुल जुबा है के साहिब किरा है के नरकं परनास है बिहेस्तुल निवास है के सरबुल गवन है हमेशुल रवन है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परं परम ईस है समस्तुल अदीस है अदेशुल अलेख है हमेशुल अपेख है जमीनुल जमा है अमीकुल इमा है करीमुल कमाल है के जुरत जमाल है के अचलं प्रकाश है के अमितो सुबास है के अजब स्वरूप है के अमितो बेपूत है के अमितो पसा है के आत्म प्रभा है के अचलं अनंग है के अमितो अपंग है मद भार छंद त्वय प्रसाद मुन मन प्रणाम गुण गण मुदाम अर बर अगंज हर नर प्रपंज अन गण प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनुभव अनास मुन मन प्रकाश गुण गण प्रणाम जल थल मुदाम अन छिज अंग आसन अभंग उपमा अपार गत मित उदार जल थल अमंड दिस विस अपंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनुभव अनास त्रित धर तुरास आ जान बाहु एकैस दाहु ओंकार आदि कथनी अनाद खल खंड ख्याल गुरबर अकाल घर घर प्रणाम चित चरण नाम अन छिज गात आजिज ना बात अन झंझ गात अन रंज बात अन तुट भंडार अन थट अपार आडीठ धर्म अत ढीठ कर्म अन बरन अनंत दाता महंत हर बोल मना छंद त्वय प्रसाद करुणालय है अर कालय है खल खंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्ब उबारण है त्रित के तरण है जग के करण है मन मान्या है जग जान्या है सर्वं पर है सर्वं कर है सर्ब पास्या है सर्ब नास्या है करुणाकर है विश्वं पर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खल खंडस है परते पर है करुणाकार है अजपा जप है अथपा थप है अकृता कृत है अमृता मृत है अमृता मृत है करुणा कृत है अकृता कृत है धरणी तृत है अमितेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत है अमृता मृत है
अजबा कृत हैं, अमृतामृत हैं, नर नायक हैं, खल कायक हैं, बेस्वंग पर हैं, करुणालय हैं, नृप नायक हैं, सर्ब पायक हैं, भाव भंजन हैं, अर्गंजन हैं, रिपतापन हैं, जप जापन हैं, अकलंकृत हैं, सर्वाकृत हैं, कर्ता कर हैं, हर्ता हर हैं, परमात्म हैं, सर्व आत्म हैं, आत्म बस हैं, जस के जस हैं, पुजंग प्रयात छंद, नमो सूरज सूरजे, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो राज संग ताम संग सांत रूपे, नमो परम तत्तंग अतत्तंग स्वरूपे, नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने, नमो युद्ध युद्धे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो भोज भोजे, नमो पान पाने, नमो कलह कर्ता, नमो सांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे अनादंग बेभूते, कलंकार रूपे अलंकार अलंके, नमो आस आसे, नमो बांक बंके, अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे, त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे, एक अक्षरी छंद अजय अलय अपय अभय, अपू अजू अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपख, अकाल दयाल अलेख अपेख, अनाम अकाम अगाह अटाह, अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी, ना रागे ना रंगे ना रूपे ना रेखे, अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे, पुजंग प्रयात छंद, नमस्तुल परनामे, समस्तुल परनासे, अगंजुल अनामे, समस्तुल निवासे निरकामंग बेपूते, समस्तुल स्वरूपे को कर्मंग परनासे सुतर्मंग बेपूते, सदा सचदानंद सतरंग परनासी करी मुल कुनिंदा, समस्तुल निवासी अजायब बेपूते, गजायब गनीमे, हरियंग करियंग करी मुल रहीमे, चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते, सोयंग भव सुबंग सर्वदा सर्वजुगते, दुकालंग परनासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे, अपंगंग बेपूते, दुकालंग परनासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे, अपंगंग बेपूते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, पातशाही दसवी त्वै प्रसाद, सुवैये सरावग सुध समूह सिधान के, देख फिरियो घर जोग जति के, सूर सुरार्दन सुध सुधादिक, संत समूह अनेक मति के, सारे ही देश को देख रहे हो मत को, ना देखियत प्राण पति के, श्री भगवान के पाए कृपा हूं ते, एक रति बिन एक रति के, माते मतंग जरे जर संग, अनूप उतंग सुरंग सवारे, कोट तुरंग कुरंग से कूदत, पौन के गौन कौ जात निवारे, भारी पुजान के भूप भली बिद, नियावत सीस ना जात बिचारे, एते पय तो कहा पय भूपत, अंत कौ नांगे ही पाए पधारे, जीत फिरै सब देश दिसान को, बाजत ढोल मृदंग नगारे, गुंजत गूढ़ गजान के, सुंदर हिंसत ही है राज हजारे, भूत भविख पवान के भूपत, कौन गणे नहीं जात बिचारे, श्रीपत श्री भगवान भजे बिन, अंत कौ अंत के धाम सिधारे, तीर्थ नान दया दम दान, सो संजम नेम अनेक बिसेखै, वेद पुराण कतेब कुरान, जमीन जमान सबान के पेखै, पौन आहार जति जत तार, सबै सो विचार हजारक देखै, श्री भगवान भजे बिन भूपत, एक रति बिन एक न लेखै, सुध सिपाह दुरंत दुबाह, सो साज सनाह दुर जान दलैंगे,
दलाएंगे भारी गुमान भरे मन मैं कर पर्वत पंख हले ना हलाएंगे तोर अरीन मरोर मवासन मातिम तंगन मान मलाएंगे श्रीपत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलाएंगे वीर अपार बड़े बरियार अभिचार है सार की धार पछैया तोरत देस मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़न हार सुबातन ही चक चार लवैया साहिब श्री सब को सिर नायक जाचक अनेक सुवेक देवैया दानव देव फनिंद निसाचर भूत भविख भवान जपेंगे जीव जिते जाल मैं थाल मैं पाल ही पाल मैं सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत धुन पापन के बहु पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिरै जग सत्तर सबै अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नरादप जौन तेरे लोक को राज करेंगे कोट इसनान गजादिक दान अनेक सुवंबर साज बरेंगे ब्रह्म महेश्वर बिसन सची पत अंत फसे जम फास परेंगे जे नर श्रीपत के प्रस हैं पग ते नर फेर न देह धरेंगे कहा पयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहो बक ध्यान लगायो नात फिरियो लिए सात समुन्द्रन लोक गयो पर लोक गवायो बास कियो बिखियान सो बैठ कै ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साच कहो सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू लै पाहन पूज धरियो सिर काहू लै लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर अवाची दिशा में है काहू पिछाह को शीस निवायो को भूतान को पूजत है पास को मिरतान को पूजन तायो कूर क्रिया उर्ज्यो सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो को भूतान को पूजत है पास को मिरतान को पूजन तायो कूर क्रिया उर्ज्यो सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पात साही दसवी कबियो बाच बेनती चाओ पई हमरी करो हाथ दै रक्षा पूरन होए चित की इच्छा तब चरणन मन रह हमारा अपना जान करो प्रत पारा हमरे दुष्ट सबै तुम कावहो आप हाथ दै मोहे बचावहो सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिखे सबै करतारा मोर रक्षा निज कर दै करियै सब बैरन कौ आज संघरियै पूरन होए हमारी आसा तोर भजन की रहै प्यासा तुम है छाड़ कोई अवर ना त्याऊं जो बार चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिखे हमारे तारिया है चुन चुन सत्तर हमारे मारिया है आप हाथ दै मुझे उबरिया है मरण काल का त्रास निवरिया है हुजो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुज जू करिया हो रच्छा राख लेहो मुहे राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर दास कंता काल पाए ब्रह्मा बाप धरा काल पाए शिव जू अवतरा काल पाए कर बिसन प्रकाशा सकल काल का किया तमासा जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जछन उपजायो
आद्यंत एकै अवतारा सोई गुरु समझी अहो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी। शिव कन को साव गुण सुख दियो सतरन को पालमो बद कियो। घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछानै घट घट के पट पट की जानै। जब उदकरख करा कर तारा प्रजा धरत तब देह अपारा। जब आकरख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह धार सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब धारै आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निरिबकार निरलंभ आदि अनिल अनादि असंभ। ताका मूड उचारत भेदा जा को भेव ना पावत बेदा। ताका कर पाहन अनुमानत महा मूड कछ भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव निरंकार का चीनत नह भेव। आप आपुनी बुद्ध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तुहे तेती। तुमरा लखा ना जाए पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा। एकै रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कही भूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी उत भुज खान बहुर रच दीनी। कहूं फूल राजा हुआ बैठा कहूं सिमट भयो शंकर एकैठा। सिगरी सृष्ट दिखाए अचम भव आदि जुगाद। स्वरूप स्वयं भव अबरछा मेरी तुम करो। सिख उबार असिख संगरो दुष्ट जित उठवत उत्पाता सकल मलेच्छ करो रान काता। जे अस तुज तव सरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हुआ मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे। जो काल को एक बार त्याय है ताके काल निकट नह है रक्षा होए ताहे सब काला। दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे निहारि हो। ताके ताप तनक मह हारि हो रिद्ध सिद्ध कारमो सब होई। दुष्ट छाह छुवै सकै ना कोई एक बार जिन तुमै संभारा। काल फास्ते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा। दारिद दुष्ट दोख ते रहा खड़ग केत मैं सरन तिहारी। आप हाथ दै लेहो उबारी सर्ब ठाउर मोह हो सहाई। दुष्ट दोख ते लेहो बचाई कृपा करी हम पर जग माता। ग्रंथ करा पूरन सुबराता किल बिख सकल देह को हरता। दुष्ट दोखियन को छाय करता श्री अस तुज जब पय दयाला। पूरन करा ग्रंथ तत्काला मन बांछत फल पावै सोई। दुख ना तिसै व्यापत कोई अड़िल सुनै गोंग जो याहे सुरसना पावई। सुनै मूड चित लाए चतुरता आवई। दुख दर्द पाओ निकट ना तिन नर के रहै। हो जो या की एक बार चाओ पई को कहै चाओ पई।
संबत सतरह सहस पणिजय अर्ध सहस पुण तीन कहिजय भाद्रव सुदी अष्टमी रविवारा तीरस तुद्रव ग्रंथ सुधारा सुवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आनेऊ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम एक ना जान्यो श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहे ओ सब तोहे बखान्यो दोहरा सगल द्वार कौ छाड़ कै गहो तुहारो द्वार बाहे गहे की लाज आस गोविंद दास तुहार सगल द्वार कौ छाड़ कै गहो तुहारो द्वार बाहे गहे की लाज आस गोविंद दास तुहार वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावन आईया शब्दोता गाव हो हरि केरा मन जिनि वसाया कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारना सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनोह विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा घर ता तेरा सब किछ है जिस देहे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिन कै मन वसया नाम जिन कै मन वसया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया कर सांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाईया सदा कुर्बान कीता गुरु विटा हो जिस दिया एह वडियाईया कहे नानक सुनहो संता हो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित घर सभागै घर सभागै शब्द वाजे कला जित घर धारिया पंच दूत तुद वास कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख हुआ तित घर अनहद वाजे साची लिवै बिन देह निमानी देह निमानी लिवै बज हो क्या करे बेचारिया तुद बाज समरथ कोय नाही कृपा कर बनवारिया ए सनाओ होर थाओ नाही शब्द लाग सवारिया कह नानक लिवै बज हो क्या करे बेचारिया आनंद आनंद सब को कहे आनंद गुरु ते जानिया जानिया आनंद सदा गुर ते कृपा करे प्यारिया कर कृपा किल विख कटे ज्ञान अंजन सारिया अंदर हो जिन का मोह टुटा तिन का शब्द सचै सवारिया कहे नानक एहो आनंद है आनंद गुर ते जानिया बाबा जिस तू देह सोई जन पावै पावै ता सो जन देह जिसनो होर क्या कर है विचारिया एक भरम भूले फिर है दह दिस एक नाम लाग सवारिया गुर प्रसादी मन भया निर्मल जिना भाणा पावै कह नानक जिस देह प्यारे सोई जन पावै आवहो संत प्यारे हो अकथ की करह कहानी
ਕਰਹਿ ਕਹਾਣੀ ਅਕਥ ਕੇਰੀ ਕਿਤ ਦੁਆਰੈ ਪਾਈਐ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਪ ਗੁਰ ਕਉ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਐ ਪਾਈਐ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਹੁ ਗੁਰੂ ਕੇਰਾ ਗਾਵਹੁ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਨਹੁ ਸੰਤਹੁ ਕਥਿਹੁ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਨੈ ਤੂੰ ਸੁਣ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਇਹ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਜਿਨ ਏਤ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ ਮਾਇਆ ਤਾ ਮੋਹਣੀ ਤਿਨੈ ਕੀਤੀ ਜਿਨ ਠਗੌਲੀ ਪਾਈਆ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਤਿਸੈ ਵਿਟਹੋ ਜਿਨ ਮੋਹ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਚੰਚਲ ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਇਹ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ ਇਹੋ ਕੁਟੰਬ ਤੂੰ ਜੇ ਦੇਖਦਾ ਚੱਲੈ ਨਾਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ ਸਾਥ ਤੇਰੇ ਚੱਲੈ ਨਾਹੀ ਤਿਸ ਨਾਲ ਕਿਉ ਚਿਤ ਲਾਈਐ ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲੇ ਨਾ ਕੀਚੈ ਜਿਤ ਅੰਤ ਪਛੋਤਾਈਐ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਤੂੰ ਹੋਵੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਿਆਰੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰਾ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ ਅੰਤੋ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਨੈ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੂੰ ਜਾਣ ਹੇ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਖੇਲ ਤੇਰਾ ਕਿਆ ਕੋ ਆਖ ਵਖਾਣ ਆਏ ਆਖ ਹੈ ਤਾ ਵੇਖ ਹੈ ਸਭ ਤੂੰ ਹੈ ਜਿਨ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਸਦਾ ਅਗੰਮ ਹੈ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਨੀ ਸੱਚਾ ਮਨ ਵਸਾਇਆ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੁਧ ਉਪਾਏ ਇਕ ਵੇਖ ਪਰਸਨ ਆਇਆ ਲਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਚੁਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਪਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਤੁਠਾ ਤਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਭਗਤਾ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ਚਾਲਾ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾ ਕੇਰੀ ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ ਲਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਹੁਤ ਨਾਹੀ ਬੋਲਣਾ ਖੰਨਿਆ ਹੋ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲ ਹੁਣ ਕੀ ਏਤ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨੀ ਆਪ ਤਜਿਆ ਹਰ ਵਾਸਨਾ ਸਮਾਣੀ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਚਾਲ ਭਗਤਾ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਨਿਰਾਲੀ ਜਿਉ ਤੂੰ ਚਲਾਏ ਤਿਵ ਚੱਲਹਿ ਸੁਆਮੀ ਹੋਰ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਜਿਵ ਤੂੰ ਚਲਾਏ ਤਿਵੈ ਚੱਲਹਿ ਜਿਨਾ ਮਾਰਗ ਪਾਵਹੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਨ ਨਾਮ ਲਾਏ ਹੈ ਸੇ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਧਿਆਵ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਏ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੈ ਸੁਖ ਪਾਵ ਹੈ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵ ਹੈ ਇਹੋ ਸੋਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵਾ ਸ਼ਬਦੋ ਸੁਹਾਵਾ ਸਦਾ ਸੋਹਿਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਇਆ ਇਹੋ ਤਿੰਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਧੁਰਹੁ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਇੱਕ ਫਿਰ ਹੈ ਕਨੇਰੇ ਕਰ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲੀ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਸੋਹਿਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਇਆ ਪਵਿੱਤ ਹੋਏ ਸੇ ਜਨਾ ਜਿਨੀ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਪਵਿੱਤ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨੀ ਧਿਆਇਆ ਪਵਿੱਤ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੁਟੰਬ ਸਹਿਤ ਸਿਉ ਪਵਿੱਤ ਸੰਗਤ ਸਬਾਈਆ ਕਹਿਦੇ ਪਵਿੱਤ ਸੁਣਦੇ ਪਵਿੱਤ ਸੇ ਪਵਿੱਤ ਜਿਨੀ ਮਨ ਵਸਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੇ ਪਵਿੱਤ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਕਰਮੀ ਸਹਿਜ ਨਾ ਉਪਜੈ ਵਿਨ ਸਹਿਜੈ ਸਹਿਸਾ ਨਾ ਜਾਏ ਨਹਿ ਜਾਏ ਸਹਿਸਾ ਕਿਤੈ ਸੰਜਮ ਰਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਸਹਿਸਾ ਜੀਉ ਮਲੀਨ ਹੈ ਕਿਤ ਸੰਜਮ ਧੋਤਾ ਜਾਏ ਮਨ ਧੋਵਹੁ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗਹੁ ਹਰ ਸਿਉ ਰਹੁ ਚਿਤ ਲਾਏ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸਹਿਜ ਉਪਜੈ ਇਹ ਸਹਿਸਾ ਇਵ ਜਾਏ
जियहु मैले बहरहु निर्मल, बहरहु निर्मल जियहु ता मैले। तिने जन्म जुआ हारिया, एह तिसना वड्डा रोग लगा, मरण मनहु विसारिया। वेदा मह नाम उत्तम सो सुन है नाही, फिर है ज्यो बेतालिया। कह नानक जिन सच तजिया, कूड़े लागे तिने जन्म जुआ हारिया। जियहु निर्मल बहरहु निर्मल, बहरहु ता निर्मल जियहु निर्मल। सतगुर ते करनी कमाणी, कूड़ के सोए पहुचै नाही, मनसा सच समाणी। जन्म रतन जिने खटिया, भले सेवन जारे। कह नानक जिन मन निर्मल, सदा रह है गुर नाले। जे को सिख गुरु सेती सनमुख होवै, होवै ता सनमुख सिख कोई, जियहु रह गुर नाले। गुर के चरण हृदय त्याए, अंतर आत्मै समाले। आप छड सदा रहै परनै, गुर बिन अवर न जानै कोई। कह नानक सुनहु संतहु, सो सिख सनमुख होए। जे को गुर ते वेमुख होवै, बिन सतगुर मुक्त न पावै। पावै मुक्त न होर थै कोई, पुछो हो बिबेकिया जाए। अनेक जूनी भरम आवै, बिन सतगुर मुक्त ना पाए। फिर मुक्त पाए लाग चरनी, सतगुरु शब्द सुनाए। कह नानक विचार देखो, बिन सतगुर मुक्त ना पाए। आवहु सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावहु सच्ची बाणी। बाणी ता गावहु गुरु केरी, बाणिया सिर बाणी। जिन कौ नदर कर्म होवै, हृदय तिना समाणी। पीवहु अमृत सदा रहो हर रंग, जपहु सारिग पाणी। कह नानक सदा गावहु एह सच्ची बाणी। सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, बाणी ता कच्ची सतगुरु बजहु होर कच्ची बाणी। कह दे कच्चे सुन दे कच्चे, कच्ची आख वखाणी। हर हर नित कर है रसना, कहया कछु ना जानी। चित जिन का हिर लया माया, बोलन पै रवानी। कह नानक सतगुरु बजहु होर कच्ची बाणी। गुर का शब्द रतन है, हीरे जित जड़ाओ। शब्द रतन जित मन लागा, एहो हुआ समाओ। शब्द सेती मन मिलिया, सच्चा लाया भाओ। आपे हीरा रतन आपे, जिसनो दे बुझाए। कह नानक शब्द रतन है, हीरा जित जड़ाओ। सेव सकत आप उपाय, कै करता आपे हुक्म वरताए। हुक्म वरताए आप वेखै, गुरमुख किसै बुझाए। तोड़े बंधन होवै मुक्त, शब्द मन वसाए। गुरमुख जिसनो आप करे, सो होवै एकस सेव लिवलाए। कह नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए। सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे, तत्तै सार ना जानी। तत्तै सार ना जानी गुरु बजहो, तत्तै सार ना जानी। तिहि गुणी संसार भ्रम सुता, सुतिया रैन विहानी। गुर कृपा ते से जन जागे, जिना हर मन वसिया। बोलह अमृत बाणी, कह नानक सो तत् पाए। जिसनो अन दिन हर लिव लागै, जागत रैन विहानी। माता के उदर मह प्रतपाल करे, सो क्यों मनहु विसारियै। मनहु क्यों विसारियै एवड दाता, जे अगन मह आहार पहुचावै। ओसनो केहो पोहे ना सकी, जिस नो अपनी लिव लावै। अपनी लिव आपे लाए, गुरमुख सदा संभालियै। कह नानक एवड दाता, सो क्यों मनहु विसारियै। जैसी अगन उदर मह, तैसी बाहर माया। माया अगन सब इको जेही।
ਕਰਤਾ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ ਜਾ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾ ਜੰਮਿਆ ਪਰਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ ਲਿਵ ਛੁੜਕੇ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ ਮੋਹ ਉਪਜੈ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਤਿਨੀ ਵਿਚੇ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ ਹਰ ਆਪ ਅਮੁੱਲਕ ਹੈ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿਸੈ ਵਿਟਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕ ਵਿਲ ਲਾਏ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਮਿਲੈ ਤਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਸਉ ਪੀਐ ਵਿਚਹੋ ਆਪ ਜਾਏ ਜਿਸ ਦਾ ਜੀਉ ਤਿਸ ਮਿਲ ਰਹੈ ਹਰ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ ਹਰ ਆਪ ਅਮੁੱਲਕ ਹੈ ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਕੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਹਰ ਪੱਲੈ ਪਾਏ ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਰਾਸ ਜਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਜਪਿਹੋ ਜੀ ਆਹੋ ਲਾਹਾ ਖਟਿਹੋ ਦਿਹਾੜੀ ਇਹੋ ਧਨ ਤਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ ਹਰ ਆਪੇ ਭਾਣਾ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਹੁਆ ਵਣਜਾਰਾ ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨਰਸ ਰਾਚ ਰਹੀ ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ ਹੂਰਤ ਕਿਤੈ ਜਿਚਰ ਹਰ ਰਸ ਪੱਲੈ ਨਾ ਪਾਏ ਹਰ ਰਸ ਪਾਏ ਪੱਲੈ ਪੀਐ ਹਰ ਰਸ ਬਹੁੜ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਲਾਗੈ ਆਏ ਇਹੋ ਹਰ ਰਸ ਕਰਮੀ ਪਾਈਐ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਜਿਸ ਆਏ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਹੋਰ ਅਨ ਰਸ ਸਭ ਵਿਸਰੇ ਜਾ ਹਰ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ ਏ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਹਰ ਤੁਮ ਮਹਿ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤਾ ਤੂੰ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ ਹਰ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤੁਧ ਵਿੱਚ ਤਾ ਤੂੰ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ ਹਰ ਆਪੇ ਮਾਤਾ ਆਪੇ ਪਿਤਾ ਜਿਨ ਜੀਓ ਉਪਾਏ ਜਗਤ ਦਿਖਾਇਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁਝਿਆ ਤਾ ਚਲਤ ਹੋਵਾ ਚਲਤ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਮੂਲ ਰਚਿਆ ਜੋਤ ਰਾਖੀ ਤਾ ਤੂੰ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ ਮਨ ਚਾਉ ਭਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਗਮ ਸੁਣਿਆ ਹਰ ਮੰਗਲ ਗਾਉ ਸਖੀ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹਰ ਗਾਉ ਮੰਗਲ ਨਿਤ ਸਖੀਏ ਸੋਗ ਦੁਖ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਦਿਨ ਸੁਭਾਗੇ ਆਪਣਾ ਪਿਰ ਜਾਪੈ ਅਨਹਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣੀ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਰਸ ਭੋਗੋ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜੋਗੋ ਏ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਇਸ ਜਗ ਮਹਿ ਆਏ ਕਹਿ ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਤੁਧ ਸਰੀਰਾ ਜਾ ਤੂੰ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ ਜਿਨ ਹਰ ਤੇਰਾ ਰਚਨ ਰਚਿਆ ਸੋ ਹਰ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਇਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਪਰਵਾਨ ਹੋਵਾ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ ਇਹ ਨਿਤ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਹੋ ਹਰ ਤੁਮ ਮਹਿ ਜੋਤ ਧਰੀ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਨਦਰੀ ਹਰ ਨਿਹਾਲਿਆ ਇਹੋ ਵਿਸ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ ਇਹੋ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁਝਿਆ ਜਾ ਵੇਖਾ ਹਰ ਇੱਕ ਹੈ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਇਹ ਨੇਤਰ ਅੰਧ ਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਦਿਬ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਈ ਏ ਸਰਵਨ ਹੋ ਮੇਰੇ ਹੋ ਸਾਚੈ ਸੁਣਨੈ ਨੋ ਪਠਾਏ ਸਾਚੈ ਸੁਣਨੈ ਨੋ ਪਠਾਏ ਸਰੀਰ ਲਾਏ ਸੁਨਹੋ ਸਤ ਬਾਣੀ ਜਿਤ ਸੁਣੀ ਮਨ ਤਨ ਹਰਿਆ ਹੋਆ ਰਸਨਾ ਰਸ ਸਮਾਣੀ ਸੱਚ ਅਲਖ ਵਿਡਾਣੀ ਤਾ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਨਹੋ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵਹੋ ਸਾਚੈ ਸੁਣਨੈ ਨੋ ਪਠਾਏ ਹਰ ਜੀਉ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੈ ਵਾਜਾ ਪਵਨ ਵਜਾਇਆ ਵਜਾਇਆ ਵਾਜਾ ਪਾਉਣ ਨਾਉ ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ ਦਸਵਾ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰੈ ਲਾਏ ਭਾਵਨੀ ਇਕਨਾ ਦਸਵਾ ਦੁਆਰ ਦਿਖਾਇਆ ਤਹਿ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਨਾਉ ਨਾਵ ਨਿਧ ਤਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਪਾਇਆ
ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਿਆਰੈ ਜੀਉ, ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੈ ਵਾਜਾ ਪਵਨ ਵਜਾਇਆ। ਇਹੋ ਸਾਚਾ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਚੈ ਘਰ ਗਾਵਹੁ, ਗਾਵਹੁ ਤਾ ਸੋਹਿਲਾ ਘਰ ਸਾਚੈ, ਜਿਥੈ ਸਦਾ ਸੱਚ ਧਿਆਵ ਹੇ। ਸੱਚੋ ਧਿਆਵ ਹੈ ਜਾ ਤੁਧ ਭਾਵ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੁਝਾਵ ਹੇ। ਇਹੋ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਖਸੇ ਸੋ ਜਨ ਪਾਵ ਹੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸੋਹਿਲਾ ਸੱਚੈ ਘਰ ਗਾਵ ਹੇ। ਅਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਾਰ ਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਾਰ ਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ।

तू चाओ सज्जन मैडया देई सिस उतार नैन महिंजे तरस दे कद पसी दीदार जे तू मित्र असाडड़ा हिक पूरी ना वे छोड़

सोए सोनंदड़ी मेरा तन मन मौला नाम जपंदड़ी लाली पंद जुलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा गुरदर्शन देख निहाली सो कहो टल गुर सेविया अहनेस सहज सुबाए दर्शन परसिया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसम दी नूर अरसहु कुरसहु चटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहांद साहो जिस पास बैठिया सोहिया सबना।

प्रगटे पले संजोगा प्रभ बाणी शब्द सुपाखिया गावो सुनो पढ़ो नित पाई गावो सुनो पढ़ो नित पाई गुर पूरे राखिया साचा साहेब मित वडाई भगत वशल

हरे नानक द्रजप निहरता के परवार आप करे शक्ति फिर आप कराए मार इकना कदी चुंगी तुझले पिसे यार आप कराए करे आप हो।

जी आओ, सारी संगत रल मिल करके कलगीधर गरीब नवाज जी दी बख्शी होई गुरु फतेह नाल सांझ पाओ, बख्शो आसीस। सारी संगत गज के आख्या करो भाई वाहिगुरु जी का, गुरु जी की फतेह। परम सन्मान जोग

तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा आग्या भई अकाल की तभी चलायो, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की, जो प्रभ को मिल बोच है खोज शब्द में। राज करेगा खालसा आकी रहना, ख्वार होए सब मिलेंगे बचे शरण जो। वाहेगुरु नाम जहाज है चढ़े सो उतरे, जो शरदा कर सेव दे गुर पार उतारन। खंडा जाके हाथ में कलगी सो है, सो हमरी रक्षा करे गुरु कलगी धर।

दे न पछोताए ए मन हर जी त्याए तू एक मन एक चित पाए हर किया सदा सदा वडियाईया दे न पछोताए ओ हर कै सद बलिहारणे जित सेवे है सुख पाए नानक गुरमुख मिल रहै हमें शब्द जलाए महला तीजा आपे सेवा लायन आपे बख्श करे

तुद आपे सिष्ट सिरजिया आपे फुन गोई सब इको शब्द वरतदा जो करे सो होई वड्याई गुरमुख दे प्रभ हर पावे सोई गुरमुख नानक आराध्या सब आखो धन धन धन गुर सोई वड्याई।

इतनी हाजिरी प्रवान करनी जी, गुरशब्द का कीर्तन करदे आं, होईयां फुल्लां दी खिमा आप सभना संगतां दा बहुत बहुत धन्नवाद। सतगुरु पातशाह दे पावन दरबारां दी हाजिरी भर के लाए प्राप्त कीते ने, सतगुरु सभना दी हाजिरी प्रवान करन। आओ हुण गुरबाणी कथा विचार दा समा होया है। ज्ञानी गुरबेल सिंह जी टोरंटो वाले सतगुरु पातशाह जी की सिफ सलाह गुरबाणी कथा विचार सरवण करवा रहे ने। प्यार साहब सरवण करके लाए प्राप्त करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की।

सुन सुन शब्द महात्म ना जान्यो है। गुरु सवारी संगत जी बहुत ही प्यार सहित।

परम सम्मान योग पतत पावन दया सिंध कृपा निध रूहानियत दे भंडार ज्ञान दे सागर गुरु गरीब निवाज सचे पातशाह आदि साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी आदि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर गुरु बाबा जी दी पावन बारगाह विच सज बैठे प्यारे गुरसिख माई भाई प्रेमी गुरसंगति रूप विच सतगुरां दे दरबार दियां हाजरियां भरियां ने गुरु सवारे गुरु के कीर्तनियां पासों बहुत ही प्यार विच अमृत बाणी दा गुरु सवारी संगत जी कीर्तन सरवण कीता है। आप जी नूं गुरु के कीर्तनिये शब्द सरवण करवा रहे सन। तुद भाव है ता नाम जपाव है सुख तेरा दिता लई है। ये शब्द ही उन्होंने टेक लई है और गुरु चरणा च जोदड़ी है। आप जपाए जपै सो नाओ आप गवाए सो हर गुण गाओ। इस शब्द विच भाव की है सिख ने जतन जरूर करना है पर आप ही भाव नूं कढ देना है। तुसीं इह शब्द पढ़दे हो मन में चितवो चितवणी उदम करो उठ नीत हर कीर्तन का आहरो हर देहो नानक के मीत। सिख ने जतन करना है मन में चितवनी चितवनी और गुरु अग्गे अरदास करनी है नाम जपना है नाम जपना है और जप के कहना तुसा ने जपाया है आपा भाव नहीं रखना। बहुत बार इदा हुंदा है कोई चंगा काम हुंदा है हमेशा बंदा कहिंदा है जी मैं खुद बखुद आप कीता है। अगर कुछ मंदा हो जाता है तो फिर मेरे गुरु से भी दोष अर्पण हो जाते हैं भी रब ही करा रहा। रब तो हमेशा भला ही करता बुरा तो कदे भी नहीं करता। सतगुर सभना का भला मनाए दा तिस दा बुरा क्यों होए। इस करके गरीब नवाज जी के चरणा च बेनती है नाम जप के महाराज गरीब नवाज कृपालू जी ये कृपा तो आप जी की वरती है। नाम तो बिना देखा जाए तो संसार एक अंधेरा है अग्ञान दा हनेरा है। एक तुहाडे नाल अमृत बाणी दा शब्द सांझा करां फिर लड़ीवार कथा वाले आवां। जिस वेले सोरठ राग दी वार समाप्त हुंदी है भगत बाणी आरंभ हुंदी है भगत कबीर साहब जी दा शब्द है और मेरे ख्याल पहला ही शब्द होना है जिदे विच उन्हां सब गिणतियां नूं गिण के ते अंत विच बचने आखे ने भी नाम तो मिड़ा हनेरी हनेरा है। आरंभ दे बोल ने बुत पूज पूज हिंदू मूवे तुरक मूवे सिर नाई ओएले जारे ओएले गाडे तेरी गत दोहू ना पाई। जे खाली बंदा कवे जी बारली पूजा कीती जावे जिवें पत्थरां दी पूजा करदे होर पूजा हुंदी है तां महाराज कहिंदे ओ पूजा व्यर्थ है। पूजा कीचै नाम धियाईऐ बिन नामै पूजना होए। तेरा नाम करी चण नाठिया जे मन उरसा होए करनी कुंगो जे रलै घट अंतर पूजा होए। पूजा कीचै नाम धियाईऐ बिन नावै पूजना होए। वो कहिंदे जी पूजा करके रब मिल गया इदां थोड़ी मिल जाना है। धूप तखाउण दे नाल रब नहीं मिलना इदां पूजा बारली नाल परमात्मा नहीं मिलना। ओदी पूजा केवल गुरु शब्द ही है जो रसना तो कहना है सतनाम श्री। तुरक कहिंदे केवल रब मक्के मदीने विच बैठा है दखण देख हरी का बासा पछम अलह मकामा। कोई पछम वाले बैठा मन के कोई दखण वाले बैठा है। तुरक मुवे सर नाई ओएले जारे ओएले गाडे तेरी गत दोहो ना पाई। जिस वेले मुसलमान चढ़ाई करते ने उन्हां

पर विरती कर्म दृढ़ाया बलराम जियो। बाणी ब्रह्मा वेद धर्म दृढ़ो, पाप तजाया बलराम जियो। हार पहलड़ी लाभ पर विरती कर्म दृढ़ाया बलराम जियो। बाणी ब्रह्मा वेद धर्म दृढ़ो, पाप तजाया बलराम जियो। धर्म दृढ़ो हर नाम तियावो, सिमरत नाम दृढ़ाया। सतगुर गुर पूरा आराधो, सब किल विख पाप गवाया। सहज आनंद हुआ वड भागी, मन हर हर मीठा लाया। जन कह नानक लाभ पहली, आरंभ काज रचाया। जन कह नानक लाभ पहली, आरंभ काज रचाया। हाँ जी मत्था टेक लो।

आया अन दिन हर लेवलाई मन चिंदिया फल पाया स्वामी हर नाम वजी वाधाई हर प्रभ ठाकुर काज रचाया तन हिरदय नाम विगासी जन नानक बोलै चौथी लावै हर पाया प्रभ अवनासी हर प्रभ ठाकुर काज रचाया तन हिरदय नाम विगासी

0: और एक दूजे दे साई जीवन, यही अरदासा बेनतियां सतगुरां दे चरणां च करदे आ। सो गुरु महाराज कृपा करन, सो अगला प्रोग्राम भाई साहब जी होनी आप संगतां नूं दसणगे। सो ढाडी जथे नूं बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी।
1: इस गुरु घर दा ढाडी जत्था ज्ञानी भाई बलबीर सिंह जी बिहारी परवाल दे, जिन्हां दे जत्थे ने आप जी नूं विआह दे संबंध विच कविता सरवण कराईए, तिन्हां दा परिवारां वल्लों धन्नवाद। हुण इत्थे ही विआह दे समागमां दी समाप्ति है, कड़ाह प्रसाद दी देग वरताई जा रही है। जो सगन दी रस्म है मेन हाल दे विच, लड़के लड़की दे माता पिता ही सगन पा सकदे ने, बाकी संगत ने सगन इत्थे नहीं पाउणा, केवल माता पिता दोनों दे ने पाउणा है, ये बेनती प्रवान करनी। दूसरी बेनती, आपां सारिआं ने गुरु साहिब का सत्कार करना है, गल्लां नहीं करनियां गुरु साहिब की हजूरी अंदर, ये बेनती जरूर प्रवान करनी जी। इत्थे ही हुण सारी समाप्ति है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।

घट घट के पट पट की जाने। जब उदकर्ष करा कर तारा, प्रजा धरत तब देह अपारा। जब आकर्ष करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन